0: खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?
3: White. Oh.

0: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: यस
1: योगी,
0: दैट्स राइट।
1: वेलकम।
0: थैंक यू।
1: स्वागतम।